0: te are karioi, e akapapa anga ime ni kia mataura tātou i te akarongorongo anga. Rātio, Pimonu, Kuki Aren.
1: Ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia tu, ia